प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं। जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो। जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं ना लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है। और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है

नाम इस देही दे अंदर है, यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इसनू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वश नहीं। साडे जिहड़े ख्याल हन वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाऊ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकाण दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्हां नू लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतिया जान, ताकि उन्हां नू आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल you will find a great difference in your quality of mind and you will achieve stillness of mind. Abhyas ki hai? Bani ch is tarah ke hai.

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उना दे उते सवार हो जाओ। दैट टू कीप आई ऑन योर एवरी

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by. Can they try to see the whole process of thoughts coming and going? अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असि अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असि अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नू देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्हां नू इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्हानु देखना है, अपने विचार असवारी कीजिए दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हानु देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वद्दा है, अगां वद्दा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधते जाएंगे, जदों गैप्स लंबे होते जाएंगे तो उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करने वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी की अंश, वो है वाहिगुरु जी की जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नु देख रहा है, फिर असी उसनु पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जड़ा कनेक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजिए। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

क्योंकि जितनी देर तक ध्यान अते सुरती बहुत बारीक बहुत मन्यूटली अपनी सुरती नू अपने ध्यान नू नहीं देख सकते, उतनी देर तक वो आत्मा जिही सूक्ष्म चीज नू नहीं देख सकते। होनी चाहिए उस दे वास्ते ए अभ्यास है। महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच सानू जो फरमाया है आप जी की सेवा च मैं दसदा हां कि इसे ही शब्द दे विच गुरु साहब ने ए तिन्ने चीजा आखियां ने। नंबर एक, भांडा धोए बैस धूप देवो, अपने इस भांडे नू शुद्ध करो तौ दूधे को जावो। जे भांडा मैला है शुद्ध नहीं है उस दूध पाया की खराब नहीं हो जाएगा। फिर कहिंदे हन दूध करम फुन सुरत समायण होए निरास जमावो। दूध कर्म कहिंदे जिहड़े तुहाडे कर्म हन ना, कर्म की हन बोलना, यह भी तो कर्म ही है ना। सारी इंट्रैक्शन जितनी भी है साड़ी ह्यूमन लाइफ दे विच ओ साड़े कर्म हन। कहिंदे ओ दुध वर्गे सच्चे सुच्चे पवित्र होने चाहिए हन, दुध वर्गे साफ दुध वर्गे निर्मल कर्म हो। झूठ ना बोलिया जाए, कौड़ा ना बोलिया जाए, फिक्का ना बोलिया जाए, होमे च ना बोलिया जाए, किसी का दिल ना दुखाया जाए, दुख ना दे किसे जी पत स्यों घर जावो। कहिंदे किसे नूं भी कदे तुहानूं दुख ना पहुंचे तां तुसीं पत दे नाल वाहिगुरू दे घर च जा सकदे हो। तुहानूं अगर कोई शख्स हर्ट हुंदा है ते ओ निर्मल कर्म नहीं है, दुध वर्गे कर्म नहीं है। कहिंदे तुहाडे कर्म दुध वर्गे होने चाहिए। सो दुध की है, दुध वर्गे कर्म। भांडा की है, ए शरीर ए साफ सुथरा होवे फिर दुध कर्म जो हन दुध वर्गे ओ इस दे विच दुध पाया होवे। फिर मक्खन कढ़न दे वास्ते असीं उस दुध नू जाग लगाने हैं, उस दुध नू जाग लगाने ना दही पाके। कहिंदे उस दुध नू जाग किवें लगाना है ताकि वह दही बने। शुभ कर्म हो गए दुध, शरीर हो गया भांडा, हुन जाग लगाना है। कहिंदे सुरती दा जाग लगाओ, सुरती दा जाग लगाओ जिहड़ी इस दुध नू तब्दील करके उस फॉर्म च कर देगी जिथों मक्खन ने निकलना है। रब है मक्खन और रब मक्खन दे वास्ते महाराज ने यह सिनेरियो साडे सामने रख्या है, यह सिमली दित्ती है। कहिंदे सुरत समायण, समायण का मतलब हुंदा है जाग लगाना। पांडा तुहे बैस धूप देवो तौ दूधे को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायण। कहिंदे दुध तुहाडे पास आ गया शुभ कर्म, वो है दुध। फुन सुरत समायण, सुरती दी आदत, सुरती दा अभ्यास एक ऐसा जाग है जिहड़ा तुसी लगा दिओ। हर वेले अपनी सुरती दी सुरत रखो कि सुरती की कर रही है, सुरती की देख रही है, सुरती की सोच रही है। सुरती दी सुरत रखो, ध्यान दा ध्यान रखो, ऐ दो गल्लां याद रखो। सुरती दी सुरत रखो, ऐ किवें होएगा। हुण लंगर छकदे हो ते लंगर असीं हत्थां नाल छक रहे हां, दंदां नाल चबा रहे हां, पर सुरती नाल की कर रहे हैं। सुरती कित्थे है, नाल दी नाल भी कम कर लो। लंगर मैं छक रहा हां, सुरती कित्थे है। ते जे सुरती उत्थे लंगर नहीं छक रही तो सुरती नूं वापस ले आओ, कि सुरती भी उत्थे ही प्रेजेंट होवे जिथे तुसी बैठे हो, जिथे लंगर छक रहे हो, ताकि तुहाडी सुरती उस टोटल जो एक्सपीरियंस नू एक्सपीरियंस करे कि तुसी बुरकी तोड़ रहे हो, उसनू मुंह च पा रहे हो, उसनू चबा रहे हो। सुरती शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट वेन वी डू थिंग्स वी आर एबसेंट। असी खाना खा रहे हुन्ने हां, सुरती करके असी किते होर हुन्ने हां। प्रेजेंट बुरकी तोड़ रहे हो, उसनू मुंह च पा रहे हो, उसनू चबा रहे हो। सुरती शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट वेन वी डू थिंग्स वी आर एबसेंट। असी खाना खा रहे हुन्ने हां, सुरती करके असी किते होर हुन्ने हां, प्रेजेंट नहीं होंगे। सुरती का अभ्यास इस तरह करना है, हर चीज दे विच सुरत नू उत्थे प्रेजेंट रखना है, सुरती दे उत्ते सुरत रखनी है। इशनान कर रहे हो तो सुरती नू देखना है कि सुरत कित्थे है, इशनान ही कर रही है जां कुछ और कर रही है। सैर कर रहे हो उदों सुरती नू देखना है कि सुरती सैर ही कर रही है जां कितें होर है। सैर असी सिंगापुर च कर रहे होइए तो सुरती करके इंडिया च तुरे

डेडिकेट नहीं कर सकते कि यह साडा फर्ज नहीं बनता कि बाबा जी की सारी बाणी च यही गल आखी गई नानक के कर केवल नाम सिर्फ नाम ही नाम है। फिर असि कदों जपांगे नाम तो बिना महाराज कहते नरक ही ना लेंगे। सो ये जो विचार आप जी के सामने रखे हैं इन्हों आप द्वारा रिकॉर्डिंग्स के विचों सुन के भी रिवाइज कर सकते हो। तीन लैवल्स हैं जो मैं आप जी की सेवा च रख चुका हाँ। काया नू साधना है और मन दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते निगाह रखनी है,

जाओ कृपा गोविंद भई। When the Lord of the universe became merciful, सुख संपत हर नाम फल पाए सत गुर मिलई। When the Lord became merciful, I found peace, wealth and the fruit of Lord's name. I have met the true Guru. अपुष्ट बात ते पई सीधरी दूत दुष्ट सजनई। That which was upside down has been set upright. The deadly enemies and adversaries have become friends. अंधकार में रतन परगासेओ मलीन बुद्ध हचनई। In the darkness the jewel shines forth and the impure understanding has become pure. जाओ कृपा गोविंद पई। When the Lord became merciful. Sukh sampad har naam phal paaye sat gur milai. I found peace, wealth and the fruit of Lord's name and I have met the true Guru. Mohe kirpan ko koe na janat sagal pavan pragatai. No one knew me, the miserable miser, but now I have become famous all over the world. संग बैठनो कही ना पावत हुन सगल चरण सेवई। बिफोर नो वन वुड इवन सिट विथ मी बट नाउ ऑल वर्शिप माय फीट। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई। आई यूज टू वॉन्डर इन सर्च ऑफ पेनीज बट नाउ ऑल द डिजायर्स ऑफ माय माइंड आर सेटिस्फाइड। एक बोल भी खपतो नाही साध संगत सीत लई। आई कुड नॉट बियर इवन वन क्रिटिसिज्म बट नाउ इन द साध संगत द कंपनी ऑफ द होली आई एम कूल्ड एंड सूथ। एक जी गुण कवन बखाने अगम अगम अगमई। वट ग्लोरियस वर्च्यूज of the inaccessible, unfathomable, profound Lord can one mere tongue describe. Das, das, das ko kariyo, jan nanak har saranai. Please make me the slave of the slave of your slaves. Servant Nanak seeks the Lord's sanctuary. Jao kirpa govind, sukh sampat har naam phal paaye.

इतनी सेवा प्रवान कर वो धन का जो जो भी आप साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी की जूरी हजर विच बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सवन करो। सुदास जी अपने उच्चे भाग संबंध है आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब के रागा के शौकी है। नहीं तो ज्यादातर गुरुद्वारा त्रिमी कीर्तन चलता है जिन्होंने कहते हैं वे वे रागी हैं संत बनते हैं सब त्रिमी टूना गा रहे हैं महाराज बख्श कर सारे साल गुरु के बख्श बरात रखन कीर्तन सुनने की श्रद्धा बख्शन आओ अंत सरबत माई भाई जितने गुरु चरणा बैठे हो छोलियां अड़के यही अरदास बेनती जो दी करनी है अकाल पुरख अगे ये शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी आप जी कृपा करो सारी छोलियां अपने पवित्र नाम की खैर पाओ जपो सारे कोई उसना खाली

0: साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी का दूजा शब्द भी मन दे प्रति है। पातशाह फरमान कर दे ने
1: बिरथा

रोज अरदास करदा सी ऐ परमात्मा आओ मेरे हिरदे दे थड़े ते बैठो। बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कह लगे खोल भाई बुआ तेरे हिरदे दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठे, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे रखां, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै एक तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया गलो फड़ के बाहर छड़ आया। जामुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बार अंदर सारिया नू कढ़दा रहा, एक एक नू कहन लगा निकलो मैं परमात्मा आ गया उनू बिठाने। ओ कहन लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, इनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

बिन सिमरन भय कुकर काम। सिमरन तो बिना ही इंसान नहीं, काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून पोगरे, बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत

कैसे फिटे गुरु बाबे फिट कैसे फिटे गुर अंगद की ते कूड़ा रे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर चौथी

हमारी जेबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जय बा एक प्रभु, जय बा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाहे। जय बा एक कवन गुण कहिए, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने। कवन गुण कहिए जेबा एक, तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम, मेरी मत थोरी राम। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, मत थोरी तू समरथ बड़ा, वड्डी हूं वड्डा।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को

जन नानक को हर बख्श रे हो, जन नानक को हर बख्श रे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आने हर तुम वड अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुठे मेल मिला हर कृपा कर।

0: Mari Gurji Ji de moh phun bandhi sath kathor kujil ko gyani kachi de moh phun bandhi sath kathor kujil ko gyani तावत भरमत रह नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरित विकल बड़ो अभिमानी परधन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहितानी बलवंश छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण सम्राथ श्री धर राख ले हो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप विदारण को हर तारण तरण सम्राथ सवै विध कुलह समूह उदाहरण सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोयो गत धाओ मूर्त घरी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लाओ हो छो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम पद नानक राम रंग आत्म स्यों रहो रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार धरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अर बंधप बुझन की सब सूझ परी ब्रजमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक घरी कर गहले हो कृपाल कृपा निध नानक काट भरम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महा मुघना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंधप तास्यो मो बढ़ो सो घना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अघना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
1: सत सूरा सीर बलवंत सत भाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज धुर धवल दुजा सेत बैकुंठ बीना परसै संत प्यार जिह करतारे संजो सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जो नाम नाम नाम रस खान हर भोजन नाम रख सदा चाहे मुख मिष्ट बानी तन सतगुरु सेवियो जिस बसाए गति अगम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सत्यथ जन्म कल उजरै गुर परस्यो अमर प्रकाश बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवे रिद्धि बसै बावां जो तीन लोकांतर मोहे हृदय वसै इक ही ओ सोए रस तिन ही जातो मुखो भगत उच्चरै अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो सोए नाम भगत परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण तपर्स कियत चरण गुर अमर पवर राय हाथ तपर्स कियत हाथ लगाए गुरु अमर पै जी तपर्स कियत जी गुर अमर बन जाय नैन तपर्स कियत नैन गुर अमर पिख जाय श्रवण तपर्स कियत श्रवण गुरु अमर सुनि जाय सक्यात सो हियो जित हियो वसै गुरु अमरदास निज जगत पित। सक्यात सो सिर जालप बनै जो सिर निवै गुरु अमर नित। सक्यात सो सिर जालप बनै जो सिर निवै गुरु अमर नित।
0: सतनाम कर सार सो दृढ़ नानक संग रियो काते अंगद लैण परिगत ताज चरण लिवरियो तित कुल

दिन सुरैन मन माही बसतै, तू कर कृपा प्रभु अपनी, बल बल जाओ श्याम सुंदर को।

0: बाले बाले जाओ श्याम सुंदर को अकाथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोए करो कृपा ठाकुर अपनी मूलालन स्यों प्रीत बनी रहाओ तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौती बदला का दूरी को गाहक आयो लाद्यों का निर्भिर्ख जिवा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगावी क्यों पुर्ज पहा मोहन ठगावी।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

भगत रविदास जी अपने शब्द विच फरमान करदे ने कि निंदा करन वाला मनुख कितने भी चंगे कर्म कर लवे उहदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जांदे ने। जिवें कि 68 तीर

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरख दी ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा।